0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी के फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंटुरी नी लिली जुविंटुरी ने पापेल जुविंटुरी नी ने कंडीशन जुविंटुरी ने फुटुरु ने हने सने बे तंबाने मक हाउ नो इन जुविंटुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इधर पॉइस हाउ ने मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora lah konsege hati ke no hadomi susah darah ni hanya seni an. Hosi tu teori apa dah kira?